0: ये मिची ये मायों बच्ची को रिसंग तो मितो सेसा और ये ने वो ये नंग का चेप शी
1: 我打算去搜搜，过一段时间我又能按住三家学。
0: 让俺开车去用吧，车上学我用品。

0: लागे नानी दुसो केजे क्यों बेचलाई मसे न युगो सामस्ते पाया शशतु सेसा रांगदे क्यों जे पेजे युमेजी दुइता स्नेई
1: आले
0: तोदो आले सगाचे रांग औयांग लागे रांग लेवो शुनिएसा सुंगुदु रांग लेवो शुनि कोबाजो होसंगुदु आ जांगतेपिगे तादे सिंगलाजे देयोजी ये छोमेजीदा जांगतेगे मिसुखांगो छोलादाबसी
2: मारे आमला किरांगे छतोगा मिति जुसेबासे मनांदा नेजुतिनजे मारी
0: छतोगाने खासेने केचिमो मारी तादे केचिशुदे रां मिसो न्योक्चोसोगा जुक्यो मारी तादे मिसुलेंग मांगे खासी रां तादो खंदा छ्याओरे गबदुदु छोमेजे थुया यो मारी रांगे सिंगु युबे
2: किरांगे कदुने ngaphento mebe sorsiegi किरां देपेजे सुरसना ngaphebe
0: सुसुस चिकदो nga ran le chu do chin de kho zmi du nie ta de ran len zhe ga yong bi yin nga da rang ba la dao ji zi ji san ya le zhen jiang zhe ge san qu tu zui de ge na le ran chue sim la